0: श्रोता जनो, ऑकलैंड श्री सत्य साई संस्था तरफ थी आप सबने अमारा जय साई राम। दर रविवारे सवारे 7 वाग्याथी 10 मिनिट सुधी आप गुजराती भाषा में साई वचनामृत सांभळी शकशो। याद रखशो, दर रविवारे सवारे 7 वाग्ये 10 मिनिट सुधी साई बाबानी अमृतमय वाणी सांभळी कृतार्थ थवा प्रयत्न करशो। आ छे प्लेनेट FM
1: 104.6।
2: जन्मभूमि, योर वीकली सिंहलीज़ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय द यूनाइटेड श्रीलंका एसोसिएशन ऑकलैंड ब्रांच इज ब्रॉट टू यू एवरी वेडनेसडे एट 8:15 PM ऑन प्लेनेट FM 104.6। Program includes current affairs, historical episodes, radio drama, popular songs, cultural information, and many more. Now also available on www.planetaudio.org.nz. Janmabhoomi, every Wednesday at 8:15 PM on Planet FM 104.6. Every weekday at 9:40, tune into the Korean community on KCR, only on 104.6 Planet FM. Time to make a cup of tea and relax with a commercial-free music break until we join Chakara Lim and his team with news, drama, music and more on Samlang Kamaya for our Cambodian Aucklanders. That's at midday.